0: चल गए रहा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए चल गए
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru
3: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.